त्यही बुकसँग हजुर अब चिनी पान्दान पान्दा वा ककबथ मान त्यही नै साना चिङ्लाइसी नै तामनिके जरा लाइतङ्ग कुङचुकमा नि नरक बाहेक गरङना नि सिकाङ अ कक थाइ सिङना नि मसुङ चिनी आङ ताबु कक साइतङ्ग नि जरा वा आङ त्यही नरक खरक्सा खरक्सा सिङ जत्त बरक न जरा कासिया कासिया जरा वा ताबु फन चिङ कुङचुकमा नि तङ्गै तङ्गो चिनी बिसिङ्ग हुइजा फियाबा चिङ सिया कबाङमा जरा ग्याबन सिङना नि मसुङ सकाङबारी या नरक न नरक वाइस फानद एबा नरक होनियावै आं जों होननानो फारिखै जों वाइस फानद जेफ्रु जों नागर सानानि नांफ्रुव आं जाया सिदिदै सायमान दंदै फानो आनि जायानो आं सिउै फानो आं नागर सानिया ओंगै दंना आमति हायै दांखाना वाइसाउसु हेकबा जों गोबांमा जराव वाइसाउसु बयनि चुबा मुं नांगि दंफानो जों चुबामुं सानानि मुजुङिया जों वानसुगो आं साग साइसुं ख्लाइमानो आं बयनि चुबामुंनो हारिनाय आं सागनो जिगन ख्लाइनानि मुजुङिया होनैनाय आबो हायगे जों साग साग रग जों साग साग सुबुसुं ख्लाइजागो दे वानसुग जागो अबनो न आवबगिनो जों गोबां मजराव जों खा सिरि गियाङै थाङो बाहायखे कंजुग माने जिनि बिसिंग' हाबै थां जिनि जे गोप्लाय ओं माने जरा रग' साक्सेसफुल ओं माने जरा रग' कंजुग माने आबोनि उक्लग' हुइजागै दङ फारिखे कक थाइजाबाय कंजुग माने न कंजुग माने न तिनिनि कक बथमा हाइफानो कंजुग माने जोंनो गाहाम ख्लाइमानो फिया बेलाय लाय थांगा हांगाय जोंनो सोबायबो मानो अकक थाइनो दै जों सालायनाय

जिंखानी रेचापुंग पांडव खनालाय थोंगन हरोकनी कोई हर्षक रेचापुंग रोकने फायदे हो चलो एसएमएस नाइने शाबोता मसी हर का सही होने का पुंग कहाँ बाय अनो कैसर रेचापुंग खनारे दे कोक थाई निनी बागी नो सिंगर मालिक ताई बिपाशा और रेचापुंग नो अंकाय सिमनानी दाउदारानी प्रशांत आओ के ताकुक प्रशांत रेचापुंग खनाना हिनी कोई हर का ताकुक मालिक ते बुकुक बिपाशारी अंगनी बलाइनो खना तो रेचापुंग निनी बागी नो अंग फायदे हो चलो खनालाय नाय बिनी खना तो जाक मानी रेचापुंग नो खनाय थोंग दी लोगी थोंग दी पांडा पाया शक जोड़ा।

सिंग खाने जाकों पांडा और खाना लाए तो उन्होंने रोकने को हर जगह जाकों फायदे है क्या जरा वह है ना है एसएमएस नहीं लेफ्ट ना एसएमएस उस आमुते सी हो ना इनका गुड मॉर्निंग बाय आंग आम प्राजलाई तीसनी बीमोल दे बोर्मा अनो रचाप मुंगतांगशा खाना रदे रचाप मुंगनी कोक थाई शिया आंग नीनी खानो हम बाय गाय तकुक बीमोल रचाप मुंगतो खाना नहीं को हर का सिया आंगनी निखानो पिया बा शाबुनी रचापुंग आंग साइमालिया तांगशा तो मन का पिया ओ रचापुंगदा खनाना हिनी बा शाका ते कुबुनी रोगदा अंखा अबो साइमालिया तांगे हिंके रचापुनी कोकथाय रोग तो बक्षा किसा कौशल रोगंगे थांगो पिया रचाप नायनी बुमुंग चंग साइमान का हंके बा स्राय स्राय अंगो ओ रचापुंग खनाना हिनी कय हरो हिनी हिंके पिया साइमालिया तांगशा ओ रचापुंग खा खलाय ओ रचापुंग नंगाना हिनी पिया साइमानिया ओ रचापुंग या फन हंगै मानो तमु नो रचापुंग या हंके पुइला नो नाकार सानजाओ हंकै खनाय नायदि अर चापुंग नते जतो खनाय तंगनाय ताखौ बुखौ मारे किचिं संबो नरबो खनादि अर चापुंग गाय अर चापुंग नर चापनायखा बुखौ साबित्री जमातिया ते ताखौ सुमितनि खरां बायके रचाप जाग्रा चापुंग

रखणाईतंग 101.6 मेगाहर्स एफएम उजंत जर स्टुडिओ सुगजागांग आरजे बिनोता गाय चिनी पांदा किशामिशा स्लाइमंग तुबजाका गिनि हायनो हायनो हायताबुक जों खानि रचापंग पांदा पुलाव तैदुलखा ताबुक जों दाल बिदाल पांदा न तैदुलायनाय दाल बिदाल पांदा ओ दाल बिदाल रचापंग कक ब्रकते हिंदी रचापंग तंगनाय

0: मोदी की पब्लिक सर्विस के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। 13 वर्ष उन्होंने गुजरात सरकार का नेतृत्व किया मुख्यमंत्री के रूप में और फिर 12 वर्ष से अब भारत के प्रधानमंत्री हैं। और इस अवसर पर हम एक नई श्रृंखला आप तक ला रहे हैं, जनसेवा से देश सेवा। आज का हमारा विषय है राष्ट्रीय समर्थन और आत्मनिर्भर सुरक्षा। और इस बहुत ही अहम विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास अतिथि आज आमंत्रित है, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला और डिफेंस एनालिस्ट एमपी नथानियल जो सीआरपीएफ के पूर्व आईजी है। लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जी और डिफेंस एनालिस्ट एमपी नथानियल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी स्टूडियोज में।
1: थैंक यू।
0: राज शुक्ला जी, पहले आपके पास आते हैं। पिछले 12 वर्षों में आप कैसे देखते हैं जो वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत किया है, क्या आपको लगता है उसके प्रमुख पहलू हैं?
1: देखिए, जो राष्ट्रीय सुरक्षा में सुधार की आप बात कर रही हैं, इसकी एक पृष्ठभूमि है और उससे मैं आपको परिचय करा दूं। इसके मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? सर्वप्रथम, वैश्विक भू राजनीति के रूप स्वरूप में गहरी तब्दीली नजर आ रही है। इनफैक्ट इट इज वन ऑफ दोज वंस इन 2-3 सेंचुरी मोमेंट्स, ये है वो। और इस बदलाव के केंद्र में है राष्ट्रीय सुरक्षा की क्षमताएं। अभी किस प्रकार डिफेंस एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं, बजट स्टेट 1.5, युद्ध का दायरा किस तरह से बढ़ रहा है, देयर आर 3 मैरिटाइम इक्विपमेंट्स टू बंद, बलमंडप फॉरमोस ब्लैक सी। और दूसरा जो बिंदु है वो है तकनीकी क्षमता, उसकी जो विशेष उपलब्धियां हैं राष्ट्रीय सुरक्षा। सो टेक्नोलॉजी इज ड्राइविंग नेशनल सिक्योरिटी लाइक नेवर बिफोर। तो इसको मद्देनजर रखते हुए 2014 से लगभग उस समय से हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा के मूल ढांचे में संपूर्ण बदलाव की ओर कई कदम उठाए हैं। इट इज ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर आप जाएं अभी एमओ की वेबसाइट पे, अवेलेबल है, 2014 में एक संबोधन है प्रधानमंत्री जी का कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में, उसमें ये जो बदलाव है संपूर्ण बदलाव उसकी रूपरेखा उन्होंने पेश की, इट्स पब्लिकली अवेलेबल। और एक बहुत ही मेरे समझ में विचारशील दस्तावेज है, वेरी थॉटफुल डॉक्यूमेंट व्हिच आउटलाइंस एवरीथिंग। और जो आप देख रही हैं राष्ट्रीय सुरक्षा में जो बदलाव हुआ है, इट फ्लोज फ्रॉम दैट डॉक्यूमेंट। उसमें देखिए सबसे पहले क्या हुआ, आपने सुना होगा, द गवर्नमेंट अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ द CDSDMA, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। इसकी मांग जो है सशस्त्र सेनाएं 1980-1970 से कर रही थी, इसका कार्यान्वयन हुआ 2020 में। इसके पीछे की सोच क्या थी? सोच ये थी कि जो सरकार है या नेतृत्व है उसने सशस्त्र सेनाओं को स्पष्ट संदेश दिया कि आपकी कुशलता में हमें पूर्ण विश्वास है, आप ही में से हम एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त करेंगे और उनको स्वतंत्रता देंगे कि आप सोच विचार करें और राष्ट्रीय सुरक्षा में जो बदलाव है उसकी दिशा, उसकी गति, उसके क्या प्रमुख स्तंभ होने चाहिए, ये आप सुन रही होंगी। थिएटराइजेशन, इंटीग्रेशन, क्रॉस पॉलिनेशन।
0: थिएटराइजेशन का मतलब

0: थोड़ा सरल शब्दों में
1: हेटेरोजेनस का
0: बताएं।
1: मतलब ये है कि अभी देखिए दी सर्विसेज एग्जिस्ट इन साइलोस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स. सो देर आर आर्मी कमांडर्स फॉर ईच एरिया, देर आर नेवल कमांडर्स फॉर ईच एरिया, दे आर एयरफोर्स कमांडर्स फॉर ईच एरिया. थिएटराइजेशन का मतलब है कि आप दो या तीन थिएटर्स बनाए, एक थिएटर विच लुक्स एट द वेस्टर्न होराइजंस, सो पश्चिमी तट की ओर, एक द ईस्टर्न होराइजंस या चाइना, वेस्टर्न होराइजंस पाकिस्तान एंड बियॉन्ड, और एक मैरिटाइम थिएटर. और दो तीन, जैसे स्पेस इज अ थिएटर, साइबर इज अ थिएटर. बट वंस यू से वेस्टर्न होराइजंस, अब उसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, दे विल बी इंटीग्रेटेड इनटू वन थिएटर कमांडर. अब देखिए CDS इज द सिंगल पॉइंट एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर, टू द गवर्नमेंट, टू नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल. सो इट्स नॉट आर्मी टेकिंग इट्स प्लान, नेवी टेकिंग इट्स प्लान, इट इज इंटीग्रेटेड प्लान विच द CDS टेक्स. दूर में देखिए क्या हुआ. So the serious, the service chief briefed him, and the serious of the integrated plan of the prime minister. All this is a long history. So that is optimizing all available resources for best combat outcomes.
0: आपको लगता है कि जो वर्तमान सरकार है, उनका जो एक whole of government approach है, वो हमेशा कहते हैं कि सबको साथ में मिलकर चलना चाहिए. तो उसी का एक ये एक प्रारूप है जो हम defence forces में देख रहे हैं.
1: आपने बहुत सही सवाल पूछा. देखिए क्यों? Even after appointing the CDS, we have appointed a CDS. But agar aap iski tulna karein, the United States had a permanent chairman in 1949. Uske baad they integrated the theaters. To aapne Gulf War I mein suna hoga, we had network centricity. Gulf War II mein we moved to integration, where a tank commander could call for the fire of an F-16. आप देखें उसके बाद क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में दे शुड बी सिविल सर्वेंट्स, सोल्जर्स, टेक्नोलॉजिकल माइंड्स, इनोवेशनिस्ट, क्रॉस पॉलिनेशन. और फिर जिसका आपने बात की, होल ऑफ गवर्नमेंट, सिविल मिलिट्री फ्यूजन, द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब, नॉट एन आर्मी मैन फॉर एन आर्मी जॉब. So those are the steps. Today we are in what we call coordinated jointness.
0: Yes.
1: Then you have to go to integration, then cross-pollination, then civil-military fusion, which is whole government. मैं आपको इसको दो उदाहरण देता हूँ. एक महीने पहले चाइना की जो सिंगवा यूनिवर्सिटी है, it has picked up an American called Omar Laghi, Nobel laureate in chemistry. किस लिए? सिंगवा यूनिवर्सिटी ने एक AI डिपार्टमेंट है फॉर एडवांस्ड मटीरियल्स, जिसमें PLA का 30% रिप्रेजेंटेशन. तो एकेडमिया, PLA एंड नोबेल लॉरेट काइंड ऑफ टैलेंट, दैट इज सिविल मिलिट्री फ्यूजन. तो ये अभी एक लंबा सफर है. CDS पहला पड़ाव था, इंटीग्रेशन थिएटराइजेशन दूसरा पड़ाव होगा, एंड दैट इज द वे वी विल ग्रो इफ वी हैव टू बिकम अ पावर ऑफ कॉन्सिक्वेंस. बट जो CDS और DMA है, जैसे मैंने कहा, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एजेंडा. और देखिए इसका एक और इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप ढांचा था
0: जी,
1: उसमें एक महत्वपूर्ण फेर बदल. देखिए पहले क्या होता था कि अ सर्विस चीफ वुड गो टू द रक्षा मंत्री थ्रू डिफेंस सेक्रेटरी, सो political executive, but the serf soldier could get to him only through the bureaucratic ear.
0: The hierarchy had to be.
1: Now it is equals. Defense secretary, CDS. Both, so that the Raksha Mantri gets the best advice. Iska, that is the logic. Aur jaise maine kaha, iske jo ab hum civil military fusion ki aur agrasar hai.
0: Ji.
1: Aur iske meel patthar kya honge? Pratibha, talent. Maine uska ek udharan diya aapka. Innovation, navadar. Today you can't have outdated processes. Dekhiye kya ho raha hai Ukraine mein. Drones, AI. ये सब हकीकतें हैं. एंड अलॉन्ग विद इनोवेशन, डीरेगुलेशन. जब मैं आर्मी कमांडर था, प्रधानमंत्री जी आए थे, उनको अभी तक याद है, ही सेड प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप्स के सिलसिले में, ही वाज टेलिंग अस दैट रिलीज द फोर्सेस ऑफ इनोवेशन, एनर्जी एंड एंटरप्राइज फ्रॉम द स्कर्ज ऑफ प्रोसेस एंड प्रोसीजर, नियमों का जाल. सो CDS DMA इज अ सिंबल, बट इसके पीछे गहरा सोच है.
0: सॉरी टू इंटरप्ट, बट आपको लगता है कि शायद उनकी दूरदर्शी सोच थी, कह रहे हैं कि 2014 में ही इस तरह का जो सोच है वो सामने आ रही थी, तो इन टाइम इट वाज टेकन जो डिसीजन.
1: इट इज अ रिवॉल्यूशनरी स्टेप इन द सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप. इट इज बिल्डिंग ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप एंड द मिलिट्री. सो देयर आर कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स हियर. दूसरा जो केंद्र बिंदु है बहुत महत्वपूर्ण, आत्मनिर्भरता एंड डिफेंस. देखिए हम हमेशा आत्मनिर्भरता की बात करते थे, बट पहला जो आत्मनिर्भरता था, इट डिपेंडेड ऑन दी PSUs, DRDOs. अब हुआ क्या है, जो युद्ध का चरित्र है, द

0: सेक्टर ऑफ वॉर, उसमें अमूल परिवर्तन हुआ है। सो टुडे इफ यू सी यूक्रेन वगैरह में पॉलीमैथ्स जो है यूके जो दर है उसको बढ़ा रहे हैं। आप देखिए यूनाइटेड स्टेट्स के साथ क्या हुआ, इट इज सच अ पावरफुल मिलिट्री, देयर इज नो मिलिट्री विच कैन पुश पार्ट टू ओशंस अवे। बट अभी एक रिपोर्ट निकली है वॉशिंगटन से कि व्हाई द यूएस हैज नॉट डिलीवर्ड इन एपिक फ्यूरी। एपिक फ्यूरी में उसका काम इतना अच्छा नहीं रहा बिकॉज इट वॉज स्लो टू लर्न द लेसंस ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन से जो सीख थी ड्रोन्स AI वो नहीं कर पाया। यूएस नेवी, उसने ईरानियन नेवी के 160 शिप्स को ध्वस्त कर दिया, बट इट वॉज नॉट स्मॉल इनफ, एजाइल इनफ, ऑटोनमस इनफ टू ऑपरेट इन द स्ट्रेट।
1: तो आप चरित्र की बात कर रहे थे कि चरित्र चेंज हो गया है
0: इस तरह से, तो अब इस चरित्र चेंज हो रहा है। यू नीड द इनोवेशन एजिलिटी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एंड स्टार्टअप्स। अब आप देखिए हमारे यहाँ क्या है, बिकॉज ऑफ रेगुलेशन प्रोसेस प्रोसीजर HL इज प्रॉमिसिंग यू एमका ओनली बाय 2030। अंग्रेजी में एक कहावत है, टुडे क्या हो रहा है दैट multi-billion-dollar capacities which are delivered in 10 years they are being overturned by innovation in 6 to 8 weeks. Ukraine mein ye ho raha. So this is the reason why we have to move towards private sector and startups. Main aapko bata dun, jab main colonel tha, agar main koi dekh bhi leta private sector ke saath to meri wo kya kehte hain professional career vyavsayik jo zindagi hai uska ant ho jata. You're not supposed to interact. Aaj aap dekhiye jo hamare navsena adhyaksh hain Mr. Swaminathan, उस सार्वजनिक मंच से he was telling the CEO startups youngster कि आप आए मुझसे कल मिलें और हमें मिलकर स्पेस का इस्तेमाल करना है फॉर मैरिटाइम क्रॉस। इतने में आपको गिना दूं, देखिए सर्वम AI गैलेक्सी मल्टीस्पेक्ट्रल स्पेस इमेजरी पनियन टर्बोफैन इंजन थर्ड आई टेक न्यू स्पेस यंग बॉयज एंड गर्ल्स
1: रिलायंस को बढ़ावा मिला है।
0: हवा मिला स्टार्टअप से, ये बहुत ही जैसे कहते हैं वेरी बोल्ड स्टेप। रक्षा मंत्री जी कल परसों बात कर रहे थे कि नॉट ओनली द फिफ्थ जनरेशन फाइटर बट द सिक्स्थ जनरेशन फाइटर। तो ये आप देखें बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है,
1: फ्यूचर रेडी जिसे हम काफी ये शब्द सुनते हैं।
0: जो हमारे भारतीय कारखाने हैं इंडियन नेवल शिपयार्ड, उसमें 42 शिप्स का निर्माण हो रहा है, शिप्स, बट वी हैव अ लॉट मोर बिकॉज़ चाइना हैज गॉट 500 शिप्स। बट ये दो तीन चीजें जो है आपने बढ़ता है, डिफेंस जिसने निजी क्षेत्र का प्रवेश हुआ, स्टार्टअप का प्रवेश हुआ। और एक आखिरी चीज बोल दूं, हमारी जो सामरिक सोच है जो नीति है उसमें देखिए मैस्थ है। आप देखिए ये जो आतंक प्रहार हुआ और देखिए इसमें जो हमने किया है उसमें दो चीजें हैं, एक तो पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया है कि देखिए आपकी जो सामरिक नीति है अगर उसमें आप आतंक का केंद्र बिंदु होगा तो हम आपको घर में घुसते मारेंगे। एंड इट इज जस्ट नॉट फ्रेज, वी हैव डन इट। हमने कैसे किया, चेतावनी और प्रभावी जवाब के द्वारा। आपको याद होगा कि ये जो शैली है पलटवार की, ये किस प्रकार से हमने इसको किया। जब उड़ी हुआ सर्जिकल स्ट्राइक्स 6 से 8 किलोमीटर हमने पहली चेतावनी दी आप मत करिए, फिर आपने किया पुलवामा, इस बार हमें पीओके नहीं पीओके बाहर बालाकोट में आपके मारा, और फिर भी जवाब नहीं माने आपने पैगाम दिया तो हमने संजू किया। आप 10 मई 2025 डिफेंसेस शैटर्ड, हमें तो ये टारगेट है ना 40-50 टारगेट, हमने तो मैप्स मारे थे। पहली बार हमने हकीकतन मारा रावलपिंडी, रायविंड, नूरखान, 1.5 किलोमीटर था जीएसएस से। पाकिस्तान नोज इट दैट दे वर बैटर्ड एंड शैटर्ड। नाउ लुक एट मैसेज दैट वी
1: सेंट। सो मिस्टर नथानियल कमिंग टू यू, आप क्या कहेंगे, ये जो पिछले 12 वर्षों में बहुत उपलब्धि रही है जैसे अभी लेफ्टिनेंट जनरल राजनाथ बताया डिफेंस सेक्टर में, अगर हम नक्सलिज्म की बात करें, नक्सलवाद जिस तरह से खत्म हुआ है और इस वर्ष डिक्लेरेशन हुई 31 मार्च को कि अब नक्सल मुक्त है भारत, इस वक्त की बड़ी उपलब्धि मानते हैं, कितनी बड़ी चुनौती थी हमारे देश के लिए और क्या लगता है आपको किस तरह ये संभव हो पाया?
2: इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नक्सलिज्म पहले तो 67 में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद CRPF ने काफ़ी जोरों से वहाँ काम किया बंगाल में, क्योंकि दार्जिलिंग वगैरह के आसपास था ज़्यादातर। वहाँ पे जब तकरीबन ख़त्म हो चुका था तो ये जो नक्सलाइट थे इन्होंने मूव किया नांद्रा की तरफ दूसरे इलाकों में, तो वहाँ जाने के बाद इन्होंने धीरे धीरे अपना जड़ जमाया वहाँ पे, खासकर अबुजमांड एरिया में। वहाँ पे दिक्कत ये थी फोर्सेस को कि कहीं पे भी अगर ऑपरेशन करना हो तो उन्हें 20-30 किलोमीटर लगातार जाना पड़ता था,

0: वापसी में जब आते थे तो काफी एग्जॉस्ट हो चुके होते थे, और वापसी में ही ये लोग नक्सल जो थे वो अटैक करते बड़े तादाद में, 200-300 के तादाद में, 70-80 आदमी पे अटैक करे। उसे क्या था कि काफी हमें नुकसान पहुंचा शुरू में, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने भी देखा कि इसको किसी तरह खत्म करना है, तो ये एक बड़ा अच्छा निर्णय लिया गया कि 31 मार्च 2026 तक हमें ये खत्म करना है। और ये जो डायरेक्टर जनरल थे उन स्टेट्स के और सीएपीएफ के, सीएपीएफ मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, जिसमें बीएसएफ, टीआरपीएफ, टीएसएफ, आईटीबीपी, ये सब उसमें आते हैं, एसएसबी भी है, तो इन लोगों को बता दिया गया कि ये हमारा डेडलाइन है, इससे पहले आपने खत्म करना। उसके हिसाब से जो दिक्कतें आती हैं ऑपरेशन में, ये गवर्नमेंट को इसके बारे में बताया गया। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि कम्युनिकेशन, जो रोड कम्युनिकेशन वो नहीं, जंगलों में आप कितने देर जाएंगे, 20 किलोमीटर है, वापसी में ये कर देते थे। और गांव वाले जो है नॉर्मल गांव में रहते हैं, आप पता नहीं लगेगा ये नक्सल है कौन है। तो सबसे बढ़िया कदम ये लिया गया सबसे पहले कि इन्होंने सड़क बनानी शुरू की। शुरू में जब इन्होंने कोशिश की सड़क बनाने की, तब इनके ऊपर अटैक होता था, कॉन्ट्रैक्टर जो थे भाग जाते थे, काम छोड़ के निकल जाते थे, तो इस वजह से सड़क बन नहीं पाई। गवर्नमेंट ने फिर क्या सोचा कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को इसमें इन्वॉल्व करो, क्योंकि मोर ऑर लेस लाइक अ पैरेंट है। तो उसमें उनको बुला के जब रोड बिछाना शुरू किया तो कुछ हद तक उन्होंने कुछ बना दिया, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर आने शुरू हुए और उनको सीआरपीएफ का प्रोटेक्शन दिया गया। इस हिसाब से फिर काफी दूर तक अबुजमांड एरिया के अंदर भी जगह ले जाने रोड बिछाने लग गए। एंड रोड के बिछाने की वजह से ट्रूप भी अंदर जाने लगे, सीआरपीएफ के कई जगह फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बनाने शुरू हुए, जिसको हम एफओबी बोलते हैं। उन एफओबी में जब कंपनियां आके बैठी, कंपनी में करीब 100-150 आदमी होते हैं और उनके पास कोई 15-20 गांव उनकी जिम्मेवारी का इलाका बनता था, और जब वो वहां जम गए सीआरपीएफ और बाकी फोर्स, इंटेलिजेंस आना बहुत आसान हो गया। उससे पहले इंटेलिजेंस हमें आसानी से मिलती नहीं, हम ज्यादातर टेक्निकल इंटेलिजेंस पे निर्भर कर रहे थे, लेकिन जो टेक्निकल इंटेलिजेंस था नक्सलाइट को ही पता है,
1: जब सड़कें बनी तो आपका वहां पर पहुंच बनी
0: बिल्कुल जी, जी। तो फोर्स जब वहां जम गए तो लोगों के अंदर जो भय था नक्सलाइट से, तो उस भय को दूर कर दिया गया और वो खुद आके बताने लगे कि फलाने फलाने जगह यहाँ पे नक्सलाइट का मूवमेंट हो रहा है। और इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे आने लगे, ऑपरेशन काफी जोरों से किया गया और उस वजह से उन लोगों के काफी कैजुअलिटी होने लग गए। और इससे ये भी हुआ कि कैजुअलिटी जो फोर्स के थे वो तकरीबन समाप्त हो गए। और सबसे बड़ा एक ऑपरेशन किया गया कारिटा हिल्स, जो कि काफी 15-20 किलोमीटर तक चला था और उसमें सीआरपीएफ के महानिदेशक महोदय खुद भी थे, और ऑपरेशन लगातार 15-20 दिन चलाए गए जंगलों के अंदर, काफी कठिन इलाका था, और कोरा बटालियंस भी वहां पे पहुंचा दिए गए, हेलीकॉप्टर और बाकी सब तैयार किए गए ताकि अगर कुछ कैजुअलिटी होता है तो उनको इवैक्यूएट किया जाए, और हेलीकॉप्टर से ही उनको खाना पानी वगैरह भी पहुंचाया जा रहा। उस कारिकुटा ऑपरेशन ने इतना बड़ा कमाल किया कि ये जितने भी नक्सलाइट थे उन्होंने कारिकुटा हिल्स को खाली कर दिया और कहीं तो आंध्रा की तरफ भागे। आंध्रा में भी जो पुलिस थी उनको पहले ही इसकी खबर थी कि यहाँ ऑपरेशन चल रही है, तो हो सकता है वो उनके तरफ बढ़े, तो वहां पे उन लोगों ने भी ऑपरेशन दोनों से शुरू किया और उसके वजह से कई पकड़े गए। सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि डीआरजी जो है डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड होते हैं छत्तीसगढ़ की अपनी फोर्स है, उन्होंने इतना बढ़िया काम किया कि एक जगह उन्हें इन्फॉर्मेशन ली कि उनका जनरल सेक्रेटरी बसव राजू वो किसी जगह जंगल में छुपा हुआ, और उसके साथ 20-25 और उनके बॉडी गार्ड वगैरह थे। उस ऑपरेशन में सभी को मार दिया गया बसव राजू के साथ, और वो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई। जब उनका जनरल सेक्रेटरी जो टॉप लीडर है वही मारा गया तो उनका जो फ्रेमवर्क है वो खत्म हो गया। उसको देखते हुए उनमें पहले से ही कई लीडर थे जो चाह रहे थे कि हम सरेंडर कर दें, सरेंडर पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाए स्टेट गवर्नमेंट ने, और ये इतने एल्यूरिंग पॉलिसीज थे कि अगर आप सरेंडर कर दो आपको इमीडिएटली 50,000 दिया जाएगा, सरेंडर करो आपको मकान बना के दिया जाएगा, आपको स्किल ट्रेनिंग दिया जाएगा,
1: सो रिहैबिलिटेशन के लिए पूरे प्रयास किए गए।
0: तो उसके वजह से कईयों ने सोचा क्यों ना हम निकल जाएं यहाँ से। और उसमें ये भी था कि जब इनके आपस में शादियां भी होती हैं, जंगलों में रहते हैं, लेकिन दे के नॉट प्रोड्यूस एनी चाइल्ड, उनका स्टेरिलाइजेशन हो जाता था, लेकिन हर आदमी

0: चाहता है भाई मेरे बच्चे भी हों और आगे मेरा संतान बढ़े, तो उसके वजह से कईयों ने सरेंडर किया, तो उनका रिवर्स किया गया स्टेरिलाइजेशन और मकान दिए गए, फैमिली ढंग से रहने लग गए, उनको ट्रेनिंग दिया गया, स्किल ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के बाद उनको काम भी दिया गया। और कई जो उनमें बड़े अच्छे थे उनको, जो कि ट्रेंड आदमी थे, उनको स्टेट पुलिस में भी लिया गया। वहां पर बस्तर बटालियन है और छत्तीसगढ़ का अपना CAFH छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स, उसके अलावा जैसे मैं बताया DRG भी है, जो अच्छे ट्रेंड थे और जिनकी लॉयल्टी क्वेश्चनेबल नहीं थी, उन लोगों को फिर ऐसे फोर्सेस में भी लिया गया।
1: जन सेवा से देश सेवा श्रृंखला में आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वह है राष्ट्रीय समर्थ और आत्मनिर्भर सुरक्षा। और हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए दो खास मेहमान हैं, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला और डिफेंस एनालिस्ट MP नथानियल, जो CRPF के पूर्व IG है। सो मिस्टर नथानियल, अगर हम वहाँ जो रहते हैं लोग ट्राइबल्स, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो अब वो लोग भी मुख्य धारा में आएंगे?
0: अब बसेस भी जाने लगे, लोगों को आसान हो गया, राशन पहुंच गए वहाँ पे, और CRPF एक ऐसा कम्युनिटी सेंटर बन गया, ये वही तकलीफ है, CRPF पहुंच जाएंगे, वहाँ खबर पहुंच जाएगी DM तक, कहीं पे भी पहुंचा खबर, तो अब वो इंटरेक्शन, क्योंकि CRPF पहुंच गए हैं, पब्लिक का इंटरेक्शन CRPF से हो रहा है और सीधे एडमिनिस्ट्रेशन से हो रहा है। पहले जब किसी कैपेबिलिटी को पहुंचाना होता तो बड़ा मुश्किल पड़ता था। जब मैं IG झारखंड था तो मेरे पास 2 हेलीकॉप्टर रखे गए थे कि कभी भी कहीं कैजुअल्टी होता है इमीडिएटली, और कई ऑपरेशन, एक सरेंडा फॉरेस्ट हमने ऑपरेशन करवाया था झारखंड में, वो लगातार हफ्ते भर का चला, सब जवान जंगल में, तो वहाँ पे राशन वगैरह भी हम हेलीकॉप्टर से पहुँचा रहे थे, ताकि और उस सरेंडा फॉरेस्ट को हमने उस वक्त पूरा खाली करवा दिया। नहीं तो उससे पहले जब भी कोई फोर्स वहाँ जाती कैजुअल्टी होता और वापस आ जाती, लेकिन इस तरीके के फैसिलिटीज के वजह से वहां पर हम अंदर जा सके, 1-2 कैजुअलिटीज हुए, लेकिन उन लोगों का हमने पूरा खात्मा कर दिया वहां पे, उस जगह से उनको उखाड़ देंगे। तो ये क्योंकि फैसिलिटीज मिल रहे हैं, वेपन भी मॉडर्न वेपन सारे मिल गए, दैट वन एंड इवन नाइट विजन डिवाइसेस वगैरह दिए गए, ताकि रात को एम्बुश में बैठे हैं अगर कोई आता है तो मालूम पड़ जाए नाइट विजन डिवाइसेस, तो इन चीजों से हम काफी, हालांकि ये पंजाब में भी हमने यूज किया हुआ था
1: जी
0: नाइट विजन डिवाइसेस, लेकिन ये काफी तादाद में जब वहाँ यूज किए। अब नाइट एंड डे ऑपरेशन में आपको रात के समय भी पूरे अलर्ट रहना पड़ता है, तो जंगलों में आप रह रहे हो, वहीं पे खाना खा रहे हो, वहीं पे कुकिंग चल रहा, सब कुछ चल रहा है, तो वैसे हालात में जरूरी है कि उनके पास ऐसे सारे मॉडर्न इक्विपमेंट वगैरह हो।
1: सो पूरे देश को आपको धन्यवाद करना चाहिए, डिफेंस फोर्सेस, जो आप लोग वहाँ तैनात होते हैं, इसलिए हम लोग आराम से सोते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जो आप कह रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर का या MSMEs या स्टार्टअप्स का आना डिफेंस प्रोडक्शन में बहुत एक उत्साहजनक डेवलपमेंट है, तो इसमें जो डिफेंस एक्विजिशन रिफॉर्म्स है, डिफेंस प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म्स है, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बता सकते हैं कि अभी क्या स्थिति है?
2: देखिए, डिफेंस एक्विजिशन में भी, और ये मैं कहना चाहूँगा, जो मौजूदा डिफेंस सेक्रेटरी साहब हैं, ही हैज डन सम आउटस्टैंडिंग वर्क। जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है उनमें एक मूलभूत रूप से सुधार लाए, जैसे मैंने आपको बताया HAL की प्रतिस्पर्धा में टाटा एयरबस को खड़ा किया गया, सो दैट HAL स्मार्टन्स अप, सो दैट RPSUs आर चैलेंज। देखिए आज चीन में क्या हो रहा है, जो प्रतिस्पर्धा है, जब चीन में आज एक एंटरप्रेन्योर सुबह उठता है, ही डज नॉट बॉदर अबाउट द अमेरिकन कंपेटिटर, ही इज मोर बॉदर अबाउट द चाइनीज कंपेटिटर। प्रतिस्पर्धा इतनी ज्यादा है कि 100 कंपनीज हैं, 5 बचती हैं, और ये 5 कंपनीज वैश्विक स्तर पर कम्पीट करने की काबिलियत रखती है, सो नीड डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन सो दैट क्वालिटी ग्रोज। तो ये इस क्षेत्र में बहुत सुधार हुआ। और देखिए दूसरी बात मैंने कही, आज आप यूपीएन देखें, सॉफ्टवेयर इनोवेशन, पहली बात रक्षा क्षेत्र में हमेशा हम बात करते थे प्लेटफॉर्म्स की, Su-30s, Jaguars, एयरक्राफ्ट के लिए, आज बात हो रही है सॉफ्टवेयर की, Maven Cloud का इस्तेमाल हुआ है वेनेजुएला में, मशीन इनेबल्ड टारगेटिंग, डेल्टा जो यूक्रेन में, AI इनेबल्ड डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, लैटिस जिससे ड्रोन स्वार्मिंग हो रही है, आप देखते हैं आजकल 2000 ड्रोन ये ऐसे ही थोड़ी ना स्वार्म करते हैं, देयर इज सॉफ्टवेयर। अब इस सॉफ्टवेयर में निवेश हो रहा है, और ये जो सॉफ्टवेयर है ये 2 हफ्तों में तब्दील हो, हार्डवेयर 4 हफ्तों में तब्दील हो। अब जब ये तब्दीलियां हैं 2-4 हफ्ते की, दे कैनॉट बी ड्रिवन बाई अ प्रोसीजर विच यू परफेक्ट इन ईयर्स। अब ये हमारे सामने एक चुनौती है, प्रोक्योरमेंट में काफी रिफॉर्म्स हुए,

0: और रिफॉर्म्स की जरूरत है। देखिए पहले क्या करती थी फौज, यूज टू ले आउट अ GSQR, जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट, कि साहब हमको इस प्रकार का जहाज चाहिए, उसके ये फीचर्स होंगे, आप बनाएं। आज का जो बाहर प्रोड्यूसर हैं, पामर लकी कहते हैं, यू आर नोबडी टू टेल मी द प्रोडक्ट यू वांट, आई विल गिव यू अ प्रोडक्ट दैट यू कांट रिफ्यूज। ये हकीकत हो रही है। अब GSQR बाहर लोग बोलते हैं GSQR इज डेड, तो मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म बहुत हुआ है, बट कंसिडरिंग वॉट इज हैपनिंग इन द फ्यूचर वी नीड मोर रिफॉर्म। देखिए हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि हुई है डिफेंस एक्सपोर्ट्स, विच इज लिंक्ड टू प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म एंड ऑल। मैं आपको बताऊं कैसे, हम जब बाहर जाते थे 2005-06 में, तो लोग कहते थे थर्ड वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट आर्मी, कहते थे बहुत बढ़िया है, आप ये हमको ये बताएं कि आप किस प्रकार के असले निर्यात करते हैं। हम कहते साहब ये हमारी नीति, देयर नॉट अ पॉलिसी, वी डिडंट एक्सपोर्ट। टुडे इफ द लास्ट फिगर्स वर आर राइट, इन फैक्ट आई वाज हियरिंग द ऑनरेबल रक्षा मंत्री, 38,000 crores, अगर आप इसकी तुलना करें 2014 से, दिस इज अ 5,500% की उछाल है।
1: 80 देशों में जा रहा है,
0: 80 देशों में, जैसे आपने कहा आर्मेनिया, थाईलैंड, इजिप्ट, बेल्जियम, कुछ यूएसए में भी कुछ हमारे प्रोडक्ट्स जा रहे हैं। 145 फर्म्स हैं एमएसएमईज वगैरह सब मिला के विच आर डीलिंग विद दिस। आप देख लें ब्रह्मोस, आकाश, 155 तोखाना, ध्रुव हेलीकॉप्टर्स, पैराशूट, प्रोटेक्टिव क्लोदिंग। या देखें दिस इज ऑल्सो अ जियोपॉलिटिकल लीवर, जिसे कहते हैं भू राजनीतिक अस्त्र है, इट इज फॉर इन्फ्लुएंस, प्रभाव, फॉर लेवरेज, इट इज फॉर स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट। हमने किस तरह से वियतनाम, फिलीपींस को ब्रह्मोस देके चीन को भेजा है। सो एक्सपोर्ट्स आर अ जियोपॉलिटिकल लीवर, दे आर अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, दे मेक सो मच सेंस, एंड आई थिंक दिस इज वन एरिया वेयर वी हैव, इन फैक्ट वी आर मूविंग फ्रॉम बीइंग इंपोर्टर्स फ्रॉम द वर्ल्ड टू एक्सपोर्टर्स टू द वर्ल्ड।
1: In fact, जो पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट आई हैं 10 अभी तक, जिसमें लगभग 5,500 से अधिक आइटम्स हैं, आपको लगता है ये भी एक बहुत अच्छी पहल है? जब आप आत्मनिर्भर भारत बनने की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, उस दिशा में जब आप इस तरह से एक ईयर मार्क करते हैं कि ये प्रोडक्ट्स यही बनेंगे, तो एक विश्वास भी आप जता रहे हैं अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज में, और वो अब दिखाई भी दे रहा है एक्सपोर्ट्स।
0: विश्वास ही नहीं, अनिवार्य था। देखिए हो क्या रहा था, मैं आपको बताऊं हकीकतन हो क्या रहा था। मान लीजिए टैंक है, भाई हम तो अगर नवाचार नहीं, जुगाड़ में तो हम बहुत बढ़िया थे, हम कहते थे वी कैन यू नो क्रिएट एनीथिंग, बट हो क्या रहा था कि एक टैंक का पाइप, वॉशर, ट्रैक, हर चीज हम इम्पोर्ट कर रहे थे, एंड वी वर पेइंग एट डॉलर्स, वी वर पेइंग एट रूबल प्राइसेस, फॉरेन एक्सचेंज का नुकसान हो रहा था, तो भाई एक नट क्यों नहीं बन सकता है भारत में? तो हमने पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन का तात्पर्य ये था कि भाई ऑल दीज थिंग्स यू विल नॉट इम्पोर्ट, आप यहीं बनाएंगे, और एमएसएमईज बना सकते हैं। आजकल तो भाई वी आर मेकिंग एडवांस्ड एयरक्राफ्ट के हम विंग्स, छोटे छोटे उसके पुर्जे बना रहे हैं। तो जब आपने ऐसे पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट बनाए कि ये आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते, आप करेंगे, पहले लोग डराते थे कि सर अगर ये नहीं आए तो जहाज में क्या होगा, बट हम जो राजनीतिक नेता थे उन्होंने कहा ये आएंगे नहीं, जब नहीं आए तो बना लिए, वेरी गुड, हमने डी आई किया है, बट थोड़े आलसी हो जाने के लिए, सो वी सेड पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन, ये आप सब इंपोर्ट करेंगे नहीं, नोइंग फुली लेट यू मेक इट। तो इसका बड़ा फर्क पड़ा है, जो हमारी इंपोर्ट के खर्च था वो कम हुआ, एंड नाउ दैट वी आर मेकिंग इट वी परफेक्ट इट एक्सपोर्ट। एम्प्लॉयमेंट ऑफ, देखिए बुनियादी सवाल क्या था आईजी साहब, उसको पुरानी चर्चा क्या थी, डिफेंस वर्सेस डेवलप, सिक्योरिटी वर्सेस डेवलप, रॉन्ग, सिक्योरिटी एंड डिफेंस एंड डेवलप, सिविल मिलिट्री फ्यूजन, साथ चलना है। सो दी जो मूल्यभूत जो चर्चा थी वही गलत थी, वी हैव टर्न्ड इट अराउंड, वी ग्रो इन साइलोस, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर, PSUs, प्राइवेट सेक्टर, एकेडमिया अपनी दुनिया में, अरे भाई एकेडमिया में आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, R&D नहीं होगी, प्योर साइंसेस नहीं होगा, कोई राष्ट्रीय सुरक्षा में तकनीकीकरण में तेजी आ ही नहीं सकती, एवरीबडी हैज टू इंटीग्रेट। सो देयर इज अ लार्जर कंसेप्चुअल चेंज ऑल्सो विच इज ड्राइविंग ऑल दीज आई वुड से मेगा रिफॉर्म्स।
1: ये जो कंसेप्चुअल चेंज की बात आप कर रहे हैं, इसका एक और रिफ्लेक्शन FTI, जो डिफेंस में FTI को लिबरलाइज किया गया है 74% तक वाया ऑटोमेटिक रूट एंड 100% वाया गवर्नमेंट, तो इसका थोड़ा सा बताएं सरल शब्दों में इसका क्या अर्थ है और ये कितना एक इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है?
0: बिल्कुल, तो आप एक छोटी कहानी सुनिए। आई वाज ग्रोइंग अप 1980, आपको भी याद होगा, स्पेस इज एन एक्सक्लूसिव थिंग, फ्यू कंट्री

0: to it. One piece, I'm emphasizing. So USSR, USA, India was also. But from this point of mark, Hamas also didn't make it. The national security, only government can do it. Only DRDO, because this exalted, lofty, or us tarikh mein kya hua ki in this PSU complex, a lot of, shall I say, slots slip in, inefficiencies. Aur usko protect karne ke liye humne kaha nahi, private sector nahi aa sakta. Dheere dheere kya hua, Bharat mein hi nahi, vaishvik sthar pe, private sector proved that it had efficiencies of its own. To FDI mein bhi yahi tha. Pehle, aur isko humne pehle kaise kaha, investment, private sector ka hissa hi nahi ho sakta. Humne kaha, kyun nahi ho sakta? The product is important. Shamta mahatvapurna. Chahe wo sarkar se aaye, chahe wo private sector se aaye, chahe wo startup se aaye. So, us tarah se ye jo FDI dheere dheere relax kiya gaya hai company structures mein, PSU structures mein, to give a level playing field. Dekhiye, humko PSUs ya se koi gila nahi hai. All that we are saying, aap PSU ho, aap private sector ho, aap startups ho, aapke liye level playing field. And if you look at the future, poore vishv mein sabse badi problem kya hai? Interceptors ki kami. You need robots to produce ammunition. So, I am saying ki India mein bhi HAL, BAL, they are very good companies. But inka aakar, inka swaroop badli karna padega. They have to become AI companies.
1: So, because the delivery is digital. Startup revolution jo aaya hai Bharat mein, aur we are the third biggest startup ecosystem in the world. Wo ek bahut bada bal hai defense sector ke liye. Jis tarah ki aap baat kar rahe hain ki competition hona chahiye aur innovation honi chahiye us disha mein.
0: बिल्कुल मेरा तो ये विश्वास है दैट द नेक्स्ट डिलीवरीज इन डिफेंस विल कम ओनली फ्रॉम स्टार्टअप्स बिकॉज दे आर एजाइल दे आर नॉट ब्यूरोक्रेटिक यू नो ये जो चीजें हैं आजकल जैसे मैंने बताया मेरे को तो ये लगता है साहब पता नहीं कि सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट हुआ है एआई और साइबर क्वांटम ये राष्ट्रीय सुरक्षा में हुआ है मोस्ट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी लाइड द कस्प ऑफ सिविल मिलिट्री फ्यूजन जिसका इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा में है सिविल स्पेस में भी है आप देखिए 10 साल में कितना कमाल कर दिया मैंने आपको इनाम गिनाए थे दीज आर जस्ट IT इंजीनियर्स किसी ने गैराज में शुरू किया किसी ने कुछ किया बट दे हैव डिलीवर्ड एंड आई एम ओनली टॉकिंग ऑफ द डिफेंस स्पेस इन द सिविल स्पेस तो और भी हुआ है सो I'll go back toward the pencil. I think very important. Release the forces of innovation, energy, and enterprise from the scourge of process and procedure. हमने जो इतने rules, नियम, शेम बना के रखे थे, that was throttling national security. इसको आजादी मिली अभी.
1: सी चेंज है पूरे एटीट्यूड में अगर हम देखें पिछले 12 सालों में मिस्टर हेतल हालांकि इस पे बात कर चुके हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है काउंटर टेररिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर ये कितना इवॉल्व हुआ है और इसमें मजबूती कितना इंपॉर्टेंट उपलब्धि है हमारे जैसे देश के लिए
2: एक काउंटर टेररिज्म के बारे में बात करें तो इट कवर्स द एंटायर कंट्री राइट फ्रॉम J&K टू साउथ एंड इवन ईस्ट टू वेस्ट और ज्यादा जो अफेक्टेड अभी है J&K है और नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट तकरीबन खत्म ही हो चुका है सिवाय मणिपुर के जहाँ पे अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है लेकिन अभी कोबरा बटालियन में पहुंच गए हैं उसी तरह कोबरा बटालियन J&K में ही पहुंच गए हैं सो दैट आर्मी रिलीव्ड ऑफ दिस इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी एंड कोबरा बटालियन अलोंग विद अदर CRPF बटालियन आर ऑपरेटिंग इन दोस एरिया अब वहां पे भी स्थिति मुझे लगता है धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और नॉर्थ ईस्ट में तो ऑलरेडी तकरीबन ठीक समाप्त हो गया है हालांकि कुछ है एक तो उल्फा है आसाम में जो कि अभी भी थोड़ा सा कुछ शरारत करता रहता है लेकिन हमारे काबू में है वो ज्यादा कुछ बड़ा ऐसे हंगामा नहीं कर सकता लेकिन J&K में जो है वहां पर आर्मी राष्ट्रीय राइफल तो रहेगी और उनके साथ मिलके सिविल पुलिस के साथ मिलके आई एम श्योर कि आने वाले दिनों में वहां पे भी उसी तरह का पीस होगा जैसे कि 1989 से पहले था और लोग और भी जाना शुरू कर देंगे
1: सो इस ऑप्टिमिस्टिक नोट पर इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल शुक्ला मिस्टर नथानियल आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और भारत का जो रक्षा क्षेत्र है किस तरह से इवॉल्व हुआ है पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उस पर आपने प्रकाश डाला बहुत बहुत धन्यवाद
3: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 21वें संस्करण में अभी आप सुन रहे थे परिचर्चा राष्ट्रीय सामर्थ्य और सुरक्षा में आत्मनिर्भरता इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के पूर्व महानिरीक्षक MP नथानियल कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं ईमेल का पता है

त्रिपुरा हाफांगनि आयुर्वेद मेडिकल रेग्नो कतरताय साखामनि गसिमुं मानखा कायदक सि बिए एम एस आचुक थाइगनांग रेग्नो कतर साखामनि सेफनि लगे लगे स्रोंनाय रग नायचेर नायमानि सेबो तंगानो होनै साखा मन्त्रियकरा पान्डामान्जाखा आगरतला पुर निगमनि डेपुटि मेयर मनिका दास दत्त साखाम सचिव किरण गेटे आकर्षण हास्टे हाफां ग्रुप बी ग्रुप सी ते ग्रुप डी सेबक तलांगमाव आमजोमुं नाहारनानि बागै स्टाफ सिलेक्शन कमिशन त्रिपुरा संसाना ककसं मुं नाहारखा बेरायखिरि ताइ चामुं मन्त्री सुशान्त चौधरी तिनि तांनो कत्र अककतुमानन रोखा बसाखामिया हास्टे मन्त्री सभाव ककलाम सालाइमाव रेमचुकु ताइ रेमचिनि बागै एस सी एस टी जी टी केटागरियाव खरक स्निरा फोरोंनाय तलांना गसिमुं रोजाखा बुनियादि रोंनायखंनि बिसिं खरक

0: के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना अवश्य पूरा करेगा। उन्होंने सरकार प्रमुख के रूप में लगातार 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। भारत ने कालासागर क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की है। कहा, भारत रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए दोनों देशों से बातचीत कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान देने की भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 वर्षों में रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि करके इसे 5.5% कर दिया। चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि दर 7.1% रहने का अनुमान। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केन्सो सुआई को देने की घोषणा की। और पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत और भाविना पटेल एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। श्री मोदी ने सुबह नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
1: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य। हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
0: श्री मोदी ने कहा कि पहले आयात बढ़ाने के प्रयास किए जाते थे, जबकि आज भारत निर्यात के नए रिकॉर्ड बना रहा है।
1: भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती, पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती है। तब इंपोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तब हम अपनी जरूरत के मोबाइल फोन भी इम्पोर्ट करते थे और आज मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का जलवा है। तब पूरे भारत में ब्लैकआउट ये ग्लोबल हेडलाइन बनती थी और आज भारत की सोलर पावर कैपेसिटी के चर्चे होते हैं।
0: जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 वर्ष की जनसेवा पूरी करने पर बधाई दी।
2: जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची ने भारत के विकास और वैश्विक स्तर पर बढ़ती पहचान में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने श्री मोदी को हमारे समय का अवतार बताया और कहा कि उन्होंने भारतीयों में अधिक आत्मविश्वास और गर्व की भावना जगाई है। नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने श्री मोदी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने भी श्री मोदी को बधाई दी है और भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया और लोकतंत्र में लगातार 25 वर्ष के नेतृत्व को एक दुर्लभ उपलब्धि करार दिया। बोत्सवाना के राष्ट्रपति डुमा बोको ने भी श्री मोदी को बधाई देते हुए भारत के लोगों के प्रति उनके समर्पण और सेवा की सराहना की और दोनों देशों के बीच स्थायी मित्रता की उम्मीद की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में अपने 25 वर्ष पूरे होने पर विश्व नेताओं से मिली शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन

0: माह 7 से 10 अक्टूबर तक किया जाएगा। ये आयोजन सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। आईएमसी 2026 का विषय सीमाओं के बिना विस्तार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 से पहले नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में वैश्विक मोबाइल संचार प्रणाली संगठन जीएसएमए के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने विकासशील देशों के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी के लिए शांति और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए मुक्त, खुले और नियम आधारित वैश्विक समुद्री व्यवस्था का आह्वान किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित सागर मंथन द ग्रेट ओशंस डायलॉग के लिए अपने संदेश में ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता लालकृष्ण आडवाणी से उनके आवास पर मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने पिछले एक दो दिनों में काला सागर क्षेत्र में हुए वाणिज्यिक जहाजों पर सिलसिलेवार हमलों की निंदा की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस तरह के हमले वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन के लिए गंभीर खतरा हैं और नाविकों की जान जोखिम में डालते हैं।
2: कल से लेकर आज तक हमने देखा है कि 4 जहाजों पर अटैक हुई है। इस हमले की हम घोर निंदा करते हैं। इससे हमारे जो वाणिज्य की नौ परिवहन है, साथ में जो हमारे नाविक समुदाय के लोग हैं, उनको खतरे के दायरे में लाया जा रहा है। पहला जहाज MV रायोद मामादोव, ये भी ब्लैक सी में इस पर अटैक हुई, जिसमें 3 भारतीय नागरिक थे। उसमें से 1 भारतीय नागरिक को चोट पहुंची और उनको वहां पर अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है।
1: रूस यूक्रेन संघर्ष पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने लगातार लंबे समय से चल रहे युद्ध को समाप्त करने की वकालत की है और शांति को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों में रूस और यूक्रेन दोनों के साथ बातचीत की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय आ गया है। प्रवक्ता ने कहा कि दोनों पक्षों के साथ भारत की बातचीत की रूस और यूक्रेन दोनों ने सराहना की है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान देने की भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस इस संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सुझाव देने की भारत की तत्परता की सराहना करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के सिर दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहलों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को हकीकत में बदला गया है।
3: भारत और फ्रांस ने नवंबर 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 जलवायु सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की थी। यह एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर ऊर्जा की पहुंच, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के शुभारंभ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस गठबंधन का उद्देश्य सौर ऊर्जा को सस्ता, भरोसेमंद और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध कराना है।
4: Is so important. We want to bring solar energy into our lives and homes by making it cheaper, more reliable, and easier to connect to grid. We will collaborate on research and innovation. We will share knowledge and exchange best practices. We will cooperate on

0: training. We will partner with other international initiatives on renewable energy.
1: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक आशीष खन्ना ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि ISA प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच और भारत की वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने की क्षमता को दर्शाता है।
2: माननीय प्रधानमंत्री ने 2018 में स्थापना दिवस पर 1000 गीगावाट का जो लक्ष्य रखा था, अगर हम 2026 में देखें जब दुनिया 3000 गीगावाट कर चुकी है, तो उनकी दूरदर्शिता सही मायने में दिखलाता है।
1: आज अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक महत्वपूर्ण वैश्विक मंच बन चुका है। वर्तमान में 129 देश इसके सदस्य के रूप में पंजीकृत हैं। भारत के नेतृत्व में ISA का उद्देश्य लोगों तक ऊर्जा की पहुंच को बेहतर बनाने के साथ साथ दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन को काफी कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही रेपो दर बढ़कर 5.5% हो गई है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी।
4: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions,
5: बदलते आर्थिक तथा वित्तीय हालात, हाल के घटनाक्रमों और भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा के बाद मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से प्रमुख नीतिगत रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दर 5.25%, जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर और बैंक दर 5.75% कर दिए गए हैं।
4: एंड द बैंक रेट टू 5.75%।
3: भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है और इसे अनुसूचित बैंकों की सूची से हटा दिया है। RBI ने कहा है कि इस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया गया है। भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA समृद्धि शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण आज नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन में व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग पर चर्चा के लिए वरिष्ठ भारतीय और EFTA के अधिकारियों, उद्योगपतियों और उद्योग प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केन्सो सोआई को देने की घोषणा की गई है। एक रिपोर्ट।
6: स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने उन्हें असममित कार्बनिक संश्लेषण में नॉन लीनियर प्रभावों और ऑटो कैटेलिसिस की खोज के लिए ये सम्मान देने की घोषणा की है। उन्होंने रसायन विज्ञान में दर्पण प्रतिबिंब चुनने की प्रक्रिया पर काम किया। दोनों वैज्ञानिकों ने रसायन विज्ञान की करीब 100 वर्ष पुरानी गुत्थी सुलझाई है। उन्होंने बताया कि किसी रासायनिक प्रक्रिया में एक दूसरे का प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब जैसे दो अणुओं में से सिर्फ एक ही के रूप कैसे बनाया जा सकता है। ये खोज दवाओं सहित कई तरह से रसायन बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
3: एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में प्रमोद भगत और भाविना पटेल भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। ये खेल 18 से 24 अक्टूबर तक जापान के आईची नागोया में आयोजित किए जाएंगे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना अवश्य पूरा करेगा। उन्होंने सरकार प्रमुख के रूप में लगातार 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। भारत ने काला सागर क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की। कहा, भारत रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए दोनों देशों से बातचीत कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान के लिए भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केन्सो सोआई को देने की घोषणा की है। और पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत और भाविना पटेल एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में होंगे भारतीय दल के ध्वजवाहक। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।